0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Mica Radio.
1: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 0208574-8410
3: साफो ट्रेवल At all protected.
4: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK. Yeah.

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

महत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पन

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
4: साफो ट्रेवल Auto protected.
5: London, तैयार हो जाओ. आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026.
6: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
5: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न.
6: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो.
5: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी.
6: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG.
5: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk.
6: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा.

0: 1, 2, 3.
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जय

0: book now. Visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज लेमिनेट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
2: London, are you ready? Raghavan presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Capco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Cow's choice.
3: 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
4: Cow's Choice Pure Ghee, har chamach mein, shudh desi swaad.
5: लंडन हालो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10 थी 20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली एडल्ट टिकट्स 10 पाउंड्स 16-17 ने 18 अक्टूबर 15 पाउंड्स 5 थी 10 वर्ष ना बाड़को ने 5 पाउंड्स अंडर 5 फ्री 11 रात नो सीजन पास 100 पाउंड्स रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा इटले बेस्ट Best.
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क
7: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
8: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
7: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
8: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
7: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
5: I love, honestly, do you know what? Everyone goes to me, Tony, you must be in LA, love being a radio person. It's nothing about them, mate. I just love meeting the people. I mean, someone's giving me an answer here, and I love this. Natasha goes, Donny, is it shake a doom doom? Shake a doom. I think they meant shake them, but I'll take shake a doom doom.
6: Good morning, Donny. आज का गाना ऐसा सुनता है
5: कैसे सुनता है
6: कोई नहीं है कमरे में
5: अच्छा
6: क्या हंसी मिला है पल
5: ओए
6: आज शरारत करने दो
5: ओए
6: काम बाकी करेंगे कल
5: ओए बीवी सुन रही है ब्रो डोंट से इट मैन
7: कोई नहीं है कमरे में
5: आपके कमरे में भी
7: क्या हंसी मिला है पल आज शरारत करने दो काम बाकी करेंगे कल
5: Ash, do you realize you've just told the entire world that's listening to Leica Radio that you're feeling a bit naughty this morning and stuff.
8: Hi, Donny. Aaj ka gana aise sunta hai.
7: Koi nahi hai kamre mein kya hansi mila hai pal aaj shararat karne do kaam baaki karenge kal.
5: Do you know what would be awesome, right? If you're watching Bhoot Bangla, they start seeing someone in the kamra and then you start singing that. Job done.
6: Hello, Donny bhai.
5: Aldav.
6: आप दिन ब दिन फ्लर्टिंग ज्यादा कर रहे हो भाई सुनो ये गाना कोई नहीं है कमरे में क्या हंसी मिला है पल आज शरारत करने दो काम बाकी करेंगे कल
5: कल करना कल करना
6: हैं
5: या आई एम गोना डू सम टुमारो एज वेल बट कुश इज गोना डू सम नाउ
9: कोई नहीं है कमरे में
5: असद भाई
9: क्या हंसी मिला है पल आज शरारत करने दो काम बाकी करेंगे कल
5: Hold up, right? एक तो, I've got this लड़की doing chitty-chitty in the air, right? I made it smell all beautiful like a boy in this room, in the studio. She's come in and in 2 seconds made it sound like a girl. But is Assad and Baba the same person? Like, as Baba made... Listen to this, right? This is Assad. Yeah, let me just replay. This is Assad this morning. I'm going to bring my mic down. Listen to this.
9: Koi nahi hai kamre mein kya hansi mila hai pal.
5: Right, so that was Assad and this is Baba.
6: Koi nahi hai kamre mein.
5: Oh no, a bit different tones.
6: Hansi mila hai pal. Aaj shararat karne do.
5: Dono ko.
6: Kaam baaki karenge kal.
5: Achha.
6: Jao Baba jao. ऐसे ना सताओ होश में आ जाओ पागल ना बन तुम
5: हाय
6: दिल बल शिकदम शिकदम
5: शिकदम
6: दिल बल शिकदम शिकदम
5: शेक अ ब्रूम
10: मॉर्निंग टोनी टुडेस गाना इज रियली नोटीस कोई नहीं है कमरे में क्या हंसी मिला है पर आज शरारत करने तो काम बाकी करे के हम जाओ पापा जाओ ऐसे ना बेकाहो होश में आ जाओ पागल ना बनो तुम दिल पर चिकदुम चिकदुम दिल पर चिकदुम चिकदुम दिल पर चिकदुम चिकदुम and then you chickadum all the way have a good day bye bye
5: chickadum all the way when you got Leica in your life

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected. Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just 1,890.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Two businesses.
2: Same town.
1: Same service.
2: One appears on page one of Google.
1: The other doesn't.
2: Guess which one gets the customer?
1: The truth is brutal.
2: The first page of Google gets the business.
1: Everyone else gets what's left.
2: So here's the real question.
1: When your customers search for what you sell, do they find you?
2: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
3: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
5: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है चूकिए नहीं विजिट हिमालय कारपेट्स .com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल
6: Hi, this is John Abraham.
7: Hi, main hu Deepika Padukone.
8: Hi, this is Papon.
9: Hi, this is Ehsan from Shankar Ehsan Loy.
10: Hi, I'm Nadeem Saifi from the Nadeem Shravan Jodi.
11: Hi, Sankit Tiwari.
12: Hi, this is Saleem.
13: Hi, this is Suleiman from Saleem Suleiman. Keep listening to us.
14: Like a radio.
15: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Mamster no panipuri and a panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
3: With more of London's biggest Asian hits, this is Laika Radio.

0: Like a Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London. Or shop the sale online at Jannan.com and JunaidJamshed.co.uk.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA.

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: अल नूर पुराना बाइतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
4: हाय एवरीवन दिस इज रिदा खान फ्रॉम सैटरडे ब्रेकफास्ट शो वेयर आई विल बी कीपिंग यू वार्म फजी एंड कोजी एवरी सिंगल सैटरडे फ्रॉम 7 ऑल द वे टिल 10 a.m. रिमेंबर

0: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: इट्स अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एंड कभी अलविदा ना कहना एज योर बैक टू बैक्स एंड द थर्ड सॉन्ग विद द वर्ड कभी हैज बीन प्लग्ड इन सेंट इन बाय रुस्तम.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सबसे निराला मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Trending track of the week.

0: जिंदगी वहाँ सेटो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: गरम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
2: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
1: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
2: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
1: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
2: 07956458872।
1: तो मिलते हैं गरबा में।

0: Salami. As always, up to you to get voting. And on the way,
1: playing next with Raj Patton.
0: From the film Vizara, Main Yahan Hoon.
1: Raj Patton. Drive is sponsored by Pepe's. Gaochu Chang flavor on every order. New at Pepe's for a limited time only. So Pepe-licious.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: 0730099823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823
5: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
6: Cow's choice, 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-333.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
2: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर स्पेशल शरद पूनम
1: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
2: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
1: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
2: 07956458872
1: तो मिलते हैं गरबा में
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
3: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.

0: Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
2: मैं बेटे के लिए justice चाहिए.
3: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam: The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam: The Conclusion. In cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Released by Zee Studios nationwide.
5: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627. अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस. एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है. अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस.
6: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
7: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
8: Use your brain now. Play the game now.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Love this track, Lika Ye in Hawaii Umpe, with Cindy D. All the Doors and Dream Sharp playing that. And if you're Wednesday drive, do you know what? Tomorrow night is the start of Traitors. I'm going to be a complete couch potato. Ah, man. Got Big Brother. Big Boss, I'm watching kind of like in and out at the moment. I'm not keen on it. And then Traitors starting tomorrow. So looking forward to that. It's so good. Then Dragon's Den as well. Oh, man. Jasmine, you love this track. I'm so glad you did. And Ruggedy High, you found it a bit difficult today. Never get it wrong. Ruggedy, what's going on? In my sequencer. Also, Ella going at two. A very sure lots of love to you as well. You got the answer right.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Don't forget some amazing deals with Southall Travel. If you think about going to Dubai, Southall Travel's affordable Dubai offer combines exclusive deals at selected partner hotels with direct flights with Emirates from just £629 per person for 3 nights. Travel by the 10th of December. T&Cs do apply. Call Southall Travel on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Raj Badr.
0: This topic that I asked you, my big question, it's definitely creating quite a stir about whether you would change your eating habits, like, I don't know, turn vegetarian if your partner is vegetarian, or turn non-veg if your partner's non-veg. I had Varsha messaging me saying, I'm a vegetarian. My husband eats meat. He tends to compromise more by eating vegetarian food, but we go to restaurants that does both, so he doesn't miss out. And you know, Mahi sent me this lovely voice note as well. Mahi, thank you very much for getting in touch. In fact, it's going to make you smart. And it's in Hindi as well. Love your Hindi, Mahi.
2: Hello, good evening, Raj. Kaise hain aap? Mahi here. Aur Raj, abhi main aapka bas abhi maine Laika radio on kiya aur aapke maine question suna aur main soch rahi hu ki ye kahin aapko meri baat to nahi pata chal gayi, to mujhe apni story sunani hogi partner wali कि क्या पसंद है और क्या छोड़ा और क्या नहीं. और बल्कि मैं स्टार्ट में ही कह दूं कि कहां तक सुनेंगे, कहां तक सुनाओ भाई. मेरे हस्बैंड जब बचपन में स्कूल वगैरह में थे, तो शायद इनके दोस्तों ने जो है वो कोई मजाक किया कि पानी से और मछलियां पकड़ के उसको थैली में डालकर उसकी स्मेल से जो है ना इनको जो है काफी तंग किया. अब क्या हुआ एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड को फिश जो है ना उसका फिश का नाम सुनना भी नहीं पसंद. तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बचपन से हमने तो अपनी फैमिली में फिश खाया था, बल्कि मैं बड़े शौक से खाती हूँ. और मेरे हस्बैंड को तो उसका नाम लेना नहीं पसंद. तो बस शादी के बाद भाई मैंने जो है वो फिश खाना छोड़ दी है. मैं भी नहीं खाती, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते. अच्छा, घर के अंदर पकाना भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया. अगर गलती से आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, किसी बूफे में चले गए, और अगर आपने फिश देख ली है और आप जा रहे उस तरफ, तो मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे ही देख रहे होते हैं कि मैं सब जगह जा सकती हूँ, बस मैं फिश वाली जगह पे नहीं जाऊंगी. तो ये एक मेरे लिए है. तो भाई मैंने अपनी जो है उफ करते क्या ना करते अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है, और बस मैं अपने हस्बैंड की वजह से फिश नहीं खा पाती हूँ. ये है मेरी दुख भरी दास्तान.
0: दुख भरी इंडीड माही. बट यू नो व्हाट, वी आर वेरी हैप्पी टू हियर दैट. आई मीन आई लाइक योर हिंदी, आई मीन उर्दू, जो भी है ना, आई जस्ट लव इट. थैंक्स माही फॉर गेटिंग इन टच. सो इट्स नो फिश फॉर Mahi, but get in touch and let me know how much you've changed your lifestyle and your eating habits for your partner. Use your number on my WhatsApp.
3: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: Pepe's app, the chance to win prizes with every order. You can now receive 25% off after every six orders. T's and C's apply. Leave a review to be in with a chance to win a £100 Pepe's voucher.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
3: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
5: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
6: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
5: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
6: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
5: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
6: 0795645872
5: तो मिलते हैं गरबा में
7: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल रूम साइज लेमिनेट्स 30 पाउंड से शुरू तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है चूकिए नहीं विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल
8: लंदन तैयार हो जाओ आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026
9: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
8: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न
9: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो गरबा खेलो
8: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी
9: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG
8: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk
9: सेगा नवरात्रि भक्ति मस्ती और गरबा
10: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
11: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए.
12: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
10: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
13: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
10: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
13: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है
10: रिलीजिंग नेशन वाइड बाई जी स्टूडियोज
14: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
16: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
17: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
18: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Advertise your business on Leica Radio Network, covering Greater London, the Midlands, Greater Manchester and West Yorkshire. Call 0207 132 1458 or email sales@leicamedia.co.uk. Feel good track. brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: It's time for everyone's favorite ride. The Radio Wally Roller Coaster.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
6: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
7: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
6: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
8: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present
9: बेटे के लिए justice चाहिए
10: मुझे justice नहीं बदला चाहिए
8: Drishyam The Conclusion Starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others
11: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
8: The end we've been waiting for Drishyam The Conclusion In cinema 2nd October
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है आखिरी हिस्सा बाकी है
8: Released by Z Studios Nationwide
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Leica Radio.
0: Pay close attention and name the film of this crap.

0: पाए।
1: हरे हरन की आवाज चित्रा जी के साथ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नंबर ऑफ द 90s, गेटिंग यू रेडी फॉर टुमारोज 90s एट नाइट। और कभी कभी जिंदगी में वो भी माहौल बनता है जहाँ पे भी आप जाके भी कुछ ना कह पाए। एंड यस, रेडियो वाली डज हैव दोज मोमेंट्स टू, बट शह, ये हमारा राज है।
2: Brought to you by Derry Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: It's a special one. You feel good track.
4: Hi, what's up? This is Rishi Rich, and you're listening to my girl, Radio Valley. Keep it locked. Peace.

0: Like a radio. क्योंकि सांस भी कभी. This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहु थी. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
1: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
0: Live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
1: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
0: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra? Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
0: Hey, it's me, Raj Badin. Don't forget to catch me on Drive every weekday afternoon from 4 PM, where we have Filmy Scramble, Choice Active, Lyrical Miracle, and of course, The Big Question, as well as all the latest news, showbiz, sport, and traffic and travel for your area. And how can we forget the big prizes which continue?
6: Drive is sponsored by Pepe's. Find your flavor at Pepe's. The biggest Asian love songs in the capital.
7: Leica Radio.
6: London.